देर जरा ये टोप पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। गोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: कहाँ कहाँ से घूम के आए?
1: बम्बई, पूना, झांसी।
0: और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।
2: कौवा चले हल्द की दाल, पहुँची गले की कैसी दाल। कौवा चले हल्द की दाल, पहुँची गले की कैसी दाल।
3: देखते देखो।

देर जरा ये टोप पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। होरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं

0: कहाँ कहाँ से घूम के आए?
1: बम्बई, पूना, झांसी।
0: और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

समन धन सज जिस पे लुटाया वो जीवन आधार हुआ। जीवन के बाजार में आकर अच्छा ही व्यवहार हुआ। अब उखड़ रहा है मेला आई पिया मिलन की बेला।

झोल है। ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ साहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन किसी से अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
2: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐजाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐजाने मन की

0: हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: ना झोल है ए जी हम ना कहते थे के दुनिया झोल है, और तुम समझते थे के बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: के अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: अज जाइए भी आप तो झूठों के बाप हैं। अजी मामा जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की पीते अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ तो कहता हूँ, कहता हूँ तो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: जी अच्छे बुरे को देखते, अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

मां जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य हिंदुस्तान
0: अमर है।

0: बुझान कटते इन चोलों को शासन के अभिमानी स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है धन्य
0: अमर है।

0: जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है।

0: प्यार ये संदेश, जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है, धन्य हिंदुस्तान।
0: अमर

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी। दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।

0: लेकिन दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी। दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ
1: मेरी कुछ से प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरी कुछ से प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों भरी आते हूँ, चंदा की चांदनी हो।

0: सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे

तारों गलिया के वो चंदा की चांदनी हो तारों गलिया के वो कश्ती में बैठ के फिर तेरी मेरी बातें हो मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की।

0: की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों भर आते हूँ, चंदा की चांदनी हो।

दिल बेकार है, यार अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूरी।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ ले मुझसे, करम से।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ ले मुझसे, करम से।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ ले मुझसे, करम से तेरे

दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ ले मुझसे, करम से।